0: दशमपहा अनुतुनाय दशमहाता लखांडे रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकिया हांडे
1: विलाव पेरवुरु दहयाई
2: विलाव ओपवेत किन आवे
3: दतरये पेरलीकरण एनएलबी मेगा पावर तवंत मेगा सुपर टैग गट अमतरव रुपियाल कोटीयक पावर सुपर टैग सह ग्रैंड सुपर टैग गट सुपर रिमोट रतया